योषा गणेन वरदद्धि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते ककुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे शमित्र शतपत्र गतालिवर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्र

सिरे करा लेगा, अड़त नोड़िए मोरे करा लेगा, उसरा उसरा निनय करा लेंगे, उड़ने उड़ने मरक करा लेंगे।